ये NHK World जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 15 जुलाई बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रीला जैन और वायला कवानो से सुने समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में पारगमन शुल्क लगाने की अपनी योजना रद्द कर दी है, हालांकि वे ईरान पर सैन्य दबाव बनाए हुए हैं। अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि उसने ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों से आने जाने वाले जहाजों के खिलाफ फिर से नाकाबंदी शुरू कर दी है। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर यह घोषणा की। उसने बताया कि मंगलवार को पूर्वी समय अनुसार शाम 4 बजे नाकाबंदी फिर से शुरू हो गई। उसने यह भी बताया कि पश्चिम एशिया में नौसेना के 20 से अधिक जहाज और सैकड़ों विमान तैनात हैं। ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने हॉर्मुज के लिए 20% पारगमन शुल्क लगाने की अपनी योजना रद्द कर दी है। उन्होंने वॉशिंगटन में पत्रकारों को बताया कि क्षेत्र के नेताओं ने इसके बदले अमेरिका में निवेश करने की पेशकश की है। इससे पहले ट्रंप ने सुझाव दिया था कि सुरक्षित आवागमन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह शुल्क आवश्यक है। हालांकि अमरीकी मीडिया केंद्रों ने कहा कि इस योजना का उनके सहयोगी देशों और उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों ने कड़ा विरोध किया है। सेंटकॉम ने कहा कि सेना ने मंगलवार को ताजा हमले किए। ये लगातार चौथा दिन है जब अमरीकी सेना ने हमले किए हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने मंगलवार को बताया कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कुवैत और बहरीन में अमरीकी वायुसैनिक अड्डों पर हमला किया है। यूक्रेन में आम नागरिकों के हताहत होने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार निगरानी संस्था ने बताया कि अकेले जून महीने में कम से कम 2,283 नागरिक मारे गए या घायल हुए, जो अप्रैल 2022 के बाद से एक महीने में हताहतों की सबसे अधिक संख्या है। यूक्रेन स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निगरानी मिशन ने मंगलवार को ये आंकड़े जारी किए। मिशन के अनुसार पिछले महीने कम से कम 293 नागरिक मारे गए और 1,990 घायल हुए। मिशन ने कहा कि हताहत नागरिकों की बढ़ती संख्या के साथ ये आंकड़े चिंताजनक रूप से बढ़ते तनाव को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में रूस द्वारा शक्तिशाली हथियारों का बढ़ता उपयोग इस वृद्धि का मुख्य कारण है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर रूस पर ताजा हमले की घोषणा की। उन्होंने लिखा कि यूक्रेनी सेना ने मध्यवर्ती रूस में स्थित बाशकोर्तोस्तान और देश के दक्षिणी भाग में स्थित क्रास्नोदार क्षेत्र में तेल रिफाइनरियों पर हमला किया है। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि उनके देश की सेनाओं ने काला सागर के किनारे स्थित ग्लेंजिक शहर में रूसी गुप्त बेड़े से संबंधित एक गश्ती जहाज और एक टैंकर पर हमला किया। उन्होंने आगे कहा कि इस युद्ध को समाप्त करना ही होगा। राष्ट्रपति ने रूस पर दबाव बनाने और उससे बातचीत में शामिल होने की आवश्यकता पर जोर दिया।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जापान के साथ सहयोग मजबूत करने के लिए टोक्यो में एक कार्यालय खोला है। इस नए कार्यालय का उद्देश्य विकासशील देशों में स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था सुदृढ़ करना है। टोक्यो में मंगलवार को उद्घाटन समारोह में WHO और जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों सहित कई लोग उपस्थित रहे। एक वीडियो संबोधन में WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रियासिस ने कहा, निम्न व मध्यम आय वाले कई देशों को अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए वित्त पोषण में कमी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने जोर दिया कि कार्यालय का उद्घाटन एक प्रयास है ताकि सहायता पर निर्भरता से हटकर स्वास्थ्य संप्रभुता की ओर बढ़ा जा सके। जापान के स्वास्थ्य मंत्री उएनो केनिचिरो ने कहा कि अधिक लचीली स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए देशों को अपना अनुभव और ज्ञान साझा करना चाहिए। उएनो ने उम्मीद जताई कि नया कार्यालय जापान और WHO के बीच संपर्क के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में मजबूती से स्थापित हो जाएगा। उन्होंने संकेत दिया कि जापान अन्य देशों में स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थाओं के निर्माण में भूमिका निभाना चाहता है। टोक्यो कार्यालय का कहना है कि वो विकासशील देशों के साथ अपनी विशेषज्ञता और जानकारी साझा करना चाहता है तथा जापान के साथ समन्वय बढ़ाने के प्रयासों के तहत स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ प्रशिक्षण सत्र और बैठकें आयोजित करना चाहता है। जापान की अग्नि एवं आपदा प्रबंधन एजेंसी का कहना है कि 6 से 12 जुलाई के बीच तापघात के कारण 4,580 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जो पिछले सप्ताह की तुलना में 3 गुना से अधिक है। एजेंसी ने इस वृद्धि का कारण कई क्षेत्रों में बारिश का मौसम समाप्त होने के बाद लगातार कई दिनों तक उच्च तापमान बने रहना बताया है। एजेंसी लोगों से तापघात बचाव उपाय तेज करने का आग्रह कर रही है। तापघात का शिकार लोगों में से 7 की मौत हो गई, 1,866 लोगों को गंभीर या कुछ कम लक्षणों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया और 2,652 लोगों में हल्के लक्षण देखे गए जिनके लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं थी। प्रभावित लोगों में से आधे से ज्यादा यानी 2,827 लोग 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के थे, 1,317 लोग 18 से 64 वर्ष के थे, 403 लोग 7 से 17 वर्ष की आयु के बीच थे और 7 वर्ष से कम आयु के 33 बच्चे थे। जापान के विश्लेषकों का कहना है कि लिथियम आयन बैटरी से जुड़ी आधी से अधिक दुर्घटनाएं चार्जिंग के दौरान हुई जब उपकरण बहुत अधिक गर्म हो गए। उनका कहना है कि गर्मियों में ऐसे मामलों में वृद्धि होने की आशंका है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इवैल्यूएशन नाइट ने पिछले 5 वर्षों में पोर्टेबल चार्जर सहित ऐसे उपकरणों से जुड़ी आग और धुएं की घटनाओं का विश्लेषण किया। उसके अनुसार 2025 में रिकॉर्ड 561 मामले सामने आए, जो 2024 की तुलना में 56 अधिक है। 2025 तक 5 वर्षों में कुल 2,140 दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। विश्लेषकों का कहना है कि इनमें से 1,237 यानी लगभग 57% दुर्घटनाएं चार्जिंग के दौरान हुई। उनका ये भी कहना है कि 453 यानी लगभग 21% मामले रिकॉल उत्पादों से संबंधित थे। गर्मी के मौसम में दुर्घटनाओं की संख्या में शायद वृद्धि देखी गई क्योंकि लिथियम आयन बैटरी ताप के प्रति संवेदनशील होती है। इनमें कारों में छोड़े गए पोर्टेबल चार्जर के मामले भी शामिल थे। नाइट लोगों से अपील कर रहा है कि चार्जिंग के दौरान उपकरणों को अपनी नजर के सामने रखें, उन्हें सीधी धूप या कारों में न छोड़ें और रिकॉल संबंधी जानकारी के बारे में जागरूक रहें।
2: इसी के साथ NHK World जापान की हिंदी सेवा से यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 20वें पाठ में व्यंजन या पेय पदार्थ में कोई चीज न डालने का अनुरोध करना सीखेंगे।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ होक्काइदो आई है। दोनों सापोरो शहर में एक मछली बाजार के पास ताजा समुद्री खाद्यों का आनंद लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में आई हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 20वें पाठ की बातचीत।
2: ओसुसुमे वा नान देसु का?
3: कोनो स्पेशल काइसेन डो गा ओसुसुमे दा यो। इकुरा तो उनी गा ताप्पुरी हाइट्टे रु यो।
2: जा सोरे कुदासाई। वातासी मो わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले मिया ने रसोइये से कहा,
2: おすすめは何ですか？
1: आपका सुझाव क्या है?
0: रसोइये ने मेन्यू की तरफ इशारा करते हुए कहा,
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: ये खास चावल और मछलियों वाला कटोरा बढ़िया है।
3: इकुरा तो उनी गा ताप्पुरी हाइट्टे रु यो।
0: इसमें ढेर सारे इकुरा और उनी हैं।
1: तब मिया ने कहा,
2: जा सोरे कुदासाई।
1: तो फिर वही लूंगी।
0: उसे देखकर ताम ने भी वही व्यंजन मंगवाया।
2: वातासी मो
1: मैं भी।
2: वासाबी वा इरेनाई दे कुदासाई।
1: वासाबी मत डालिएगा।
0: फिर रसोइये ने पुष्टि की,
3: वासाबी नुकी ने।
0: वासाबी के बिना ना।
1: उसके बाद उसने मिया से पूछा,
3: सोचिरा वा?
0: और आप?
1: तो मिया ने जवाब दिया,
2: वातासी वा वासाबी ओ ताकुसान इरेते कुदासाई।
1: मेरे वाले में ढेर सारी वासाबी डालिएगा।
0: इस बातचीत में काइसेंदोन और वासाबी का जिक्र है। काइसेंदोन का मतलब है चावल और मछलियों वाला कटोरा, और वासाबी एक पौधे की जड़ है। ये पिसी हुई सरसों जैसी झारदार होती है और कच्ची मछली के साथ खाने में अच्छी लगती है।
1: वासाबी की झार जीभ पर ही नहीं नाक में भी महसूस होती है। मिया ने बहुत सारी वासाबी डलवाई है। लगता है उसे उसकी झार बहुत पसंद है।
0: आज का मुख्य वाक्य है,
2: वासाबी वा इरेनाई दे कुदासाई,
0: यानी वासाबी मत डालिएगा। ये वाक्य याद करके आप व्यंजन या पेय पदार्थ में कोई चीज न डालने का अनुरोध कर सकेंगे।
1: इस वाक्य में
4: वासाबी
1: का मतलब है पिसी हुई वासाबी, और
4: इरेनाई दे कुदासाई
1: का मतलब है मत डालिएगा।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यंजन या पेय पदार्थ में कुछ न डालने का अनुरोध करते समय क्रिया के नाई रूप का उपयोग करते हैं और उसके बाद लगाते हैं
4: देकुदासाई।
1: क्रिया के नाई रूप में अंत में नाई लगता है। ये क्रिया का नकारात्मक रूप है। वाक्य में
4: इरेनाई
1: क्रिया
4: इरेरु
1: यानी डालना का नाई रूप है।
0: उसके बाद लगाया है
4: देकुदासाई,
0: तो बन गया
4: इरेनाई देकुदासाई।
0: जो चीज आपको नहीं चाहिए उसके नाम के बाद कारक वा लगाते हैं।
1: क्रिया के नाई रूप के बाद
4: देकुदासाई
1: जोड़कर आप कुछ न करने का अनुरोध कर सकते हैं।
0: तो अब ये वाक्य बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
4: इरेनाई देकुदासाई, वासाबी वा इरेनाई देकुदासाई।
1: अब एक कैफे में चल रही छोटी सी बातचीत सुनते हैं। इसमें ग्राहक पेय पदार्थ में कोई चीज न डालने का अनुरोध कर रहा है।
5: ऑरेंज जूस 1つ氷は入れないでください。
6: かしこまりました。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले आदमी ने कहा,
5: ऑरेंज जूस 1つ氷は入れないでください。
0: एक संतरे का रस, बर्फ मत डालिएगा।
4: ऑरेंज जूस
1: है संतरे का रस।
4: हितोत्सु
1: का अर्थ है एक, और
4: कोरी
1: का मतलब है बर्फ। उस आदमी को संतरे के रस में बर्फ नहीं चाहिए, इसलिए उसने कहा
4: कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई।
0: जवाब में महिला ने कहा
2: काशिकोमारीमास्ता।
1: जी,
0: ये अच्छा या समझ गई कहने का औपचारिक तरीका है।
1: तो अब सुनिए और दोहराइए
4: कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई, कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई।
0: अब आप भी वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि आप दुकानदार से कहना चाहते हैं कि आपकी सलाद में ड्रेसिंग ना डाले। ड्रेसिंग को जापानी भाषा में कहते हैं
4: ड्रेसिंग, ड्रेसिंग।
0: इस वाक्य में क्रिया डालना का जापानी शब्द होगा
4: काकेरु,
0: और उसका नाई रूप है
4: काकेनाई, काकेनाई।
0: तो कोशिश कीजिए।
2: ドレッシングはかけないでください。ドレッシングはかけないでください。
1: अब मान लीजिए कि आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं और दुकानदार से कहना चाहते हैं कि उसमें मिर्च न डाले। मिर्च को जापानी भाषा में कहते हैं
4: तोगाराशी, तोगाराशी।
1: उसका नाई रूप है
4: स्कावानाई, स्कावानाई।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
3: तोगाराशी वा स्कावानाई दे कुदासाई, तोगाराशी वा स्कावानाई दे कुदासाई।
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो मिया की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
2: おすすめは何ですか？
1: इसमें
4: おすすめ
1: का मतलब है सुझाव। तो
4: おすすめは何ですか
1: का मतलब है आपका क्या सुझाव है। इसके जवाब में रसोईया आपको बताएगा कि रेस्तरां का सबसे लोकप्रिय व्यंजन कौन सा है या उसके अनुसार सबसे स्वादिष्ट व्यंजन कौन सा है।
0: तो अब उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए।
4: おすすめは何ですか？
1: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: अब बारी है अंश काइतो के साथ खाना पीना की। आज हम बता रहे हैं होक्काइडो के प्रसिद्ध समुद्री खाद्य पदार्थों के बारे में।
1: होक्काइडो जापान सागर, ओहोत्सुक सागर और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। इस वजह से वहाँ का मत्स्य उद्योग बहुत समृद्ध है।
0: वहाँ केकड़ा, समुद्र फेनी, सामन, इकुरा यानी सामन के अंडे और अन्य बहुत सारे समुद्री खाद्य खूब मिलते हैं।
1: दुनिया भर में फैले खाने पीने के शौकीन लोग होक्काइडो के समुद्री खाद्यों का स्वाद पहचानते हैं। खास तौर पर यहाँ की सीपों का बड़ी संख्या में निर्यात होता है।
0: होक्काइडो के बंदरगाहों के पास बहुत सारे रेस्तरां हैं जहाँ कच्चे केकड़े या झींगा मछली के स्थानीय व्यंजनों का आनंद लिया जा सकता है। ताज़ा समुद्र फेनी और समुद्री साही भी बहुत स्वादिष्ट होती हैं।
1: अगर आप होक्काइडो घूमने जाएं तो मौसमी समुद्री खाद्य का भी भरपूर लुत्फ जरूर उठाइएगा। दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम और मिया होक्काइडो में घूमेंगी। तब तक के लिए
1: सायोनारा।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 15 जुलाई बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रीला जैन और वायला कवानो से सुने समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में पारगमन शुल्क लगाने की अपनी योजना रद्द कर दी है, हालांकि वे ईरान पर सैन्य दबाव बनाए हुए हैं। अमेरिकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि उसने ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों से आने जाने वाले जहाजों के खिलाफ फिर से नाकाबंदी शुरू कर दी है। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर यह घोषणा की। उसने बताया कि मंगलवार को पूर्वी समय अनुसार शाम 4 बजे नाकाबंदी फिर से शुरू हो गई। उसने यह भी बताया कि पश्चिम एशिया में नौसेना के 20 से अधिक जहाज और सैकड़ों विमान तैनात हैं। ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने हॉर्मुज के लिए 20% पारगमन शुल्क लगाने की अपनी योजना रद्द कर दी है। उन्होंने वॉशिंगटन में पत्रकारों को बताया कि क्षेत्र के नेताओं ने इसके बदले अमेरिका में निवेश करने की पेशकश की है। इससे पहले ट्रंप ने सुझाव दिया था कि सुरक्षित आवागमन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह शुल्क आवश्यक है। हालांकि अमरीकी मीडिया केंद्रों ने कहा कि इस योजना का उनके सहयोगी देशों और उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों ने कड़ा विरोध किया है। सेंटकॉम ने कहा कि सेना ने मंगलवार को ताजा हमले किए। ये लगातार 4th दिन है जब अमरीकी सेना ने हमले किए हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने मंगलवार को बताया कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कुवैत और बहरीन में अमरीकी वायु सैनिक अड्डों पर हमला किया है। यूक्रेन में आम नागरिकों के हताहत होने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार निगरानी संस्था ने बताया कि अकेले जून महीने में कम से कम 2,283 नागरिक मारे गए या घायल हुए, जो अप्रैल 2022 के बाद से एक महीने में हताहतों की सबसे अधिक संख्या है। यूक्रेन स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निगरानी मिशन ने मंगलवार को ये आंकड़े जारी किए। मिशन के अनुसार पिछले महीने कम से कम 293 नागरिक मारे गए और 1,990 घायल हुए। मिशन ने कहा कि हताहत नागरिकों की बढ़ती संख्या के साथ ये आंकड़े चिंताजनक रूप से बढ़ते तनाव को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में रूस द्वारा शक्तिशाली हथियारों का बढ़ता उपयोग इस वृद्धि का मुख्य कारण है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर रूस पर ताजा हमले की घोषणा की। उन्होंने लिखा कि यूक्रेनी सेना ने मध्यवर्ती रूस में स्थित बाशकोर्तोस्तान और देश के दक्षिणी भाग में स्थित क्रास्नोदार क्षेत्र में तेल रिफाइनरियों पर हमला किया है। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि उनके देश की सेनाओं ने काला सागर के किनारे स्थित ग्लेंजिक शहर में रूसी गुप्त बेड़े से संबंधित एक गश्ती जहाज और एक टैंकर पर हमला किया। उन्होंने आगे कहा कि इस युद्ध को समाप्त करना ही होगा। राष्ट्रपति ने रूस पर दबाव बनाने और उससे बातचीत में शामिल होने की आवश्यकता पर जोर दिया।

0: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जापान के साथ सहयोग मजबूत करने के लिए टोक्यो में एक कार्यालय खोला है। इस नए कार्यालय का उद्देश्य विकासशील देशों में स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था सुदृढ़ करना है। टोक्यो में मंगलवार को उद्घाटन समारोह में WHO और जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों सहित कई लोग उपस्थित रहे। एक वीडियो संबोधन में WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रियासिस ने कहा, निम्न व मध्यम आय वाले कई देशों को अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए वित्त पोषण में कमी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने जोर दिया कि कार्यालय का उद्घाटन एक प्रयास है ताकि सहायता पर निर्भरता से हटकर स्वास्थ्य संप्रभुता की ओर बढ़ा जा सके। जापान के स्वास्थ्य मंत्री उएनो केनिचिरो ने कहा कि अधिक लचीली स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए देशों को अपना अनुभव और ज्ञान साझा करना चाहिए। उएनो ने उम्मीद जताई कि नया कार्यालय जापान और WHO के बीच संपर्क के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में मजबूती से स्थापित हो जाएगा। उन्होंने संकेत दिया कि जापान अन्य देशों में स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थाओं के निर्माण में भूमिका निभाना चाहता है। टोक्यो कार्यालय का कहना है कि वो विकासशील देशों के साथ अपनी विशेषज्ञता और जानकारी साझा करना चाहता है तथा जापान के साथ समन्वय बढ़ाने के प्रयासों के तहत स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ प्रशिक्षण सत्र और बैठकें आयोजित करना चाहता है। जापान की अग्नि एवं आपदा प्रबंधन एजेंसी का कहना है कि 6 से 12 जुलाई के बीच तापघात के कारण 4,580 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जो पिछले सप्ताह की तुलना में 3 गुना से अधिक है। एजेंसी ने इस वृद्धि का कारण कई क्षेत्रों में बारिश का मौसम समाप्त होने के बाद लगातार कई दिनों तक उच्च तापमान बने रहना बताया है। एजेंसी लोगों से तापघात बचाव उपाय तेज करने का आग्रह कर रही है। तापघात का शिकार लोगों में से 7 की मौत हो गई, 1,866 लोगों को गंभीर या कुछ कम लक्षणों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया और 2,652 लोगों में हल्के लक्षण देखे गए जिनके लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं थी। प्रभावित लोगों में से आधे से ज्यादा यानी 2,827 लोग 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के थे, 1,317 लोग 18 से 64 वर्ष के थे, 403 लोग 7 से 17 वर्ष की आयु के बीच थे और 7 वर्ष से कम आयु के 33 बच्चे थे। जापान के विश्लेषकों का कहना है कि लिथियम आयन बैटरी से जुड़ी आधी से अधिक दुर्घटनाएं चार्जिंग के दौरान हुई जब उपकरण बहुत अधिक गर्म हो गए। उनका कहना है कि गर्मियों में ऐसे मामलों में वृद्धि होने की आशंका है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इवैल्यूएशन नाइट ने पिछले 5 वर्षों में पोर्टेबल चार्जर सहित ऐसे उपकरणों से जुड़ी आग और धुएं की घटनाओं का विश्लेषण किया। उसके अनुसार 2025 में रिकॉर्ड 561 मामले सामने आए, जो 2024 की तुलना में 56 अधिक हैं। 2025 तक 5 वर्षों में कुल 2,140 दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। विश्लेषकों का कहना है कि इनमें से 1,237 यानी लगभग 57% दुर्घटनाएं चार्जिंग के दौरान हुई। उनका ये भी कहना है कि 453 यानी लगभग 21% मामले रिकॉल उत्पादों से संबंधित थे। गर्मी के मौसम में दुर्घटनाओं की संख्या में शायद वृद्धि देखी गई क्योंकि लिथियम आयन बैटरी ताप के प्रति संवेदनशील होती है। इनमें कारों में छोड़े गए पोर्टेबल चार्जर के मामले भी शामिल थे। नाइट लोगों से अपील कर रहा है कि चार्जिंग के दौरान उपकरणों को अपनी नजर के सामने रखें, उन्हें सीधी धूप या कारों में न छोड़ें और रिकॉल संबंधी जानकारी के बारे में जागरूक रहें।
0: इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 20वें पाठ में व्यंजन या पेय पदार्थ में कोई चीज न डालने का अनुरोध करना सीखेंगे।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ होक्काइदो आई है। दोनों सापोरो शहर में एक मछली बाजार के पास ताजा समुद्री खाद्यों का आनंद लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में आई हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 20वें पाठ की बातचीत।
2: ओसुसुमे वा नान देसु का?
3: कोनो स्पेशल काइसेन डो गा ओसुसुमे दा यो। इकुरा तो उनी गा ताप्पुरी हाइट्टे रु यो।
2: जा सोरे कुदासाई। वातासी मो わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले मिया ने रसोइये से कहा,
2: おすすめは何ですか？
1: आपका सुझाव क्या है?
0: रसोइये ने मेन्यू की तरफ इशारा करते हुए कहा,
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: ये खास चावल और मछलियों वाला कटोरा बढ़िया है।
3: इकुरा तो उनी का ताप्पुरी हाइट्टे रु यो।
0: इसमें ढेर सारे इकुरा और उनी है।
1: तब मिया ने कहा,
2: जा सोरे कुदासाई।
1: तो फिर वही लूंगी।
0: उसे देखकर ताम ने भी वही व्यंजन मंगवाया।
2: वतासी मो।
1: मैं भी।
2: वासाबी वा इरेनाई दे कुदासाई।
1: वासाबी मत डालिएगा।
0: फिर रसोइये ने पुष्टि की,
3: वासाबी नुकी ने।
0: वासाबी के बिना ना।
1: उसके बाद उसने मिया से पूछा,
3: सोचिरा वा?
0: और आप?
1: तो मिया ने जवाब दिया,
2: वातासी वा वासाबी ओ ताकुसान इरेते कुदासाई।
1: मेरे वाले में ढेर सारी वासाबी डालिएगा।
0: इस बातचीत में काइसेंदोन और वासाबी का जिक्र है। काइसेंदोन का मतलब है चावल और मछलियों वाला कटोरा, और वासाबी एक पौधे की जड़ है। ये पिसी हुई सरसों जैसी झारदार होती है और कच्ची मछली के साथ खाने में अच्छी लगती है।
1: वासाबी की झार जीभ पर ही नहीं नाक में भी महसूस होती है। मिया ने बहुत सारी वासाबी डलवाई है। लगता है उसे उसकी झार बहुत पसंद है।
0: आज का मुख्य वाक्य है,
2: वासाबी वा इरेनाई दे कुदासाई,
0: यानी वासाबी मत डालिएगा। ये वाक्य याद करके आप व्यंजन या पेय पदार्थ में कोई चीज न डालने का अनुरोध कर सकेंगे।
1: इस वाक्य में
4: वासाबी
1: का मतलब है पिसी हुई वासाबी और
4: इरेनाई दे कुदासाई
1: का मतलब है मत डालिएगा।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यंजन या पेय पदार्थ में कुछ न डालने का अनुरोध करते समय क्रिया के नाई रूप का उपयोग करते हैं और उसके बाद लगाते हैं
4: देकुदासाई।
1: क्रिया के नाई रूप में अंत में नाई लगता है। ये क्रिया का नकारात्मक रूप है। वाक्य में
4: इरेनाई
1: क्रिया
4: इरेरु
1: यानी डालना का नाई रूप है।
0: उसके बाद लगाया है
4: देकुदासाई,
0: तो बन गया
4: इरेनाई देकुदासाई।
0: जो चीज आपको नहीं चाहिए उसके नाम के बाद कारक वा लगाते हैं।
1: क्रिया के नाई रूप के बाद
4: देकुदासाई
1: जोड़कर आप कुछ न करने का अनुरोध कर सकते हैं।
0: तो अब ये वाक्य बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
4: इरेनाई देकुदासाई, वासाबी वा इरेनाई देकुदासाई।
1: अब एक कैफे में चल रही छोटी सी बातचीत सुनते हैं। इसमें ग्राहक पेय पदार्थ में कोई चीज न डालने का अनुरोध कर रहा है।
5: ऑरेंज जूस 1つ कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई।
2: かしこまりました।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले आदमी ने कहा,
5: ऑरेंज जूस 1つ कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई,
0: एक संतरे का रस बर्फ मत डालिएगा।
4: ऑरेंज जूस
1: है संतरे का रस।
4: हितोत्सु
1: का अर्थ है एक और
4: कोरी
1: का मतलब है बर्फ। उस आदमी को संतरे के रस में बर्फ नहीं चाहिए, इसलिए उसने कहा
4: कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई।
0: जवाब में महिला ने कहा
2: काशिकुमारीमास्ता।
1: जी,
0: ये अच्छा या समझ गई कहने का औपचारिक तरीका है।
1: तो अब सुनिए और दोहराइए
4: कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई, कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई।
0: अब आप भी वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि आप दुकानदार से कहना चाहते हैं कि आपकी सलाद में ड्रेसिंग ना डाले। ड्रेसिंग को जापानी भाषा में कहते हैं
4: ड्रेसिंग, ड्रेसिंग।
0: इस वाक्य में क्रिया डालना का जापानी शब्द होगा
4: काकेरु,
0: और उसका नाई रूप है
4: काकेनाई, काकेनाई।
0: तो कोशिश कीजिए।
2: ドレッシングはかけないでください。ドレッシングはかけないでください。
1: अब मान लीजिए कि आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं और दुकानदार से कहना चाहते हैं कि उसमें मिर्च न डाले। मिर्च को जापानी भाषा में कहते हैं
4: तोगाराशी, तोगाराशी।
1: उसका नाई रूप है
4: स्कावानाई, स्कावानाई।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
5: तोगाराशी वा स्कावानाई दे कुदासाई, तोगाराशी वा स्कावानाई दे कुदासाई।
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो मिया की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
2: おすすめは何ですか？
1: इसमें
4: おすすめ
1: का मतलब है सुझाव। तो
4: おすすめは何ですか
1: का मतलब है आपका क्या सुझाव है। इसके जवाब में रसोईया आपको बताएगा कि रेस्तरां का सबसे लोकप्रिय व्यंजन कौन सा है या उसके अनुसार सबसे स्वादिष्ट व्यंजन कौन सा है।
0: तो अब उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए।
4: おすすめは何ですか？
1: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
6: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: अब बारी है अंश काइटो के साथ खाना पीना की। आज हम बता रहे हैं होक्काइडो के प्रसिद्ध समुद्री खाद्य पदार्थों के बारे में।
1: होक्काइडो जापान सागर, ओहोत्स्क सागर और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। इस वजह से वहाँ का मत्स्य उद्योग बहुत समृद्ध है।
0: वहाँ केकड़ा, समुद्र फेनी, सामन, इकुरा यानी सामन के अंडे और अन्य बहुत सारे समुद्री खाद्य खूब मिलते हैं।
1: दुनिया भर में फैले खाने पीने के शौकीन लोग होक्काइडो के समुद्री खाद्यों का स्वाद पहचानते हैं। खास तौर पर यहाँ की सीपों का बड़ी संख्या में निर्यात होता है।
0: होक्काइडो के बंदरगाहों के पास बहुत सारे रेस्तरां हैं, जहाँ कच्चे केकड़े या झींगा मछली के स्थानीय व्यंजनों का आनंद लिया जा सकता है। ताज़ा समुद्र फेनी और समुद्री शाही भी बहुत स्वादिष्ट होती हैं।
1: अगर आप होक्काइडो घूमने जाएं, तो मौसमी समुद्री खाद्य का भी भरपूर लुत्फ जरूर उठाइएगा। दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम और मिया होक्काइडो में घूमेंगी। तब तक के लिए
1: सायोनारा।

की वेबसाइट है nhk.jp/urdu। उर्दू नशरियात का आगाज हुआ चाहता है, हमारे साथ रहिएगा।

0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें। आलमी इदारा सेहत WHO ने जापान के साथ अपने तआवुन को गहरा करने के लिए टोक्यो में एक दफ्तर कायम किया है। इस नए दफ्तर का मकसद तरक्की पजीर ममालिक में सेहत की देखभाल के निज़ामों को मजबूत बनाना है। मंगल को टोक्यो में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। WHO और जापान की वजारत सेहत के सीनियर हुकाम ने दीगर अफराद के हमरा इस तकरीब में शिरकत की। एक वीडियो खिताब में WHO के डायरेक्टर जनरल टेडरोस एडहानोम गेब्रियासिस ने कहा, कम और दरमियानी आमदनी वाले बहुत से ममालिक को अपने सेहत निज़ामों के लिए गैर मुस्तहकम फाइनेंसिंग का सामना रहता है। उन्होंने जोर दिया कि टोक्यो दफ्तर का इफ्तिताह इमदाद पर इन्हिसार के बजाय सेहत के मैदान में खुद मुख्तारी की जानिब मुंतकली की कोशिशों का मजहर है। जापानी वजीर सेहत ओइनो केनइचिरो ने कहा, ममालिक के लिए जरूरी है कि वह सेहत के ज्यादा मुस्तहकम निज़ाम की तामीर के लिए अपने तजर्बे और इल्म का इश्तराक करें। उन्होंने कहा, उन्हें उम्मीद है कि नया दफ्तर जापान और WHO के दरमियान राब्ते के मरकज के तौर पर मजबूती से कदम जमा लेगा। उन्होंने इंदिया दिया कि जापान दीगर ममालिक में सेहत देखभाल के निज़ामों की तामीर में किरदार अदा करना चाहता है। टोक्यो दफ्तर का कहना है कि वह तरक्की पजीर ममालिक के साथ अपनी मालूमात और इल्म महारत का इश्तराक और जापान के साथ हम आहंगी को गहरा करने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर सेहत के हुक्काम के साथ तरबियती नशिस्तें और इजलास मुनाकिद करना चाहता है। जापान की फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी का कहना है कि 6 से 12 जुलाई के दरमियान 4,580 अफराद को हीट स्ट्रोक यानी लू लगने के सबब अस्पताल ले जाया गया। यह तादाद गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत 3 गुना ज्यादा है। एजेंसी ने कई रोज से दिन के वक्त दर्जा हरारत ज्यादा रहने को मुतासरीन की तादाद में इजाफे की वजह करार दिया है, क्योंकि बहुत से इलाकों में बरसात का मौसम खत्म हो गया है। एजेंसी लोगों से अपील कर रही है कि वह हीट स्ट्रोक के खिलाफ इकदाम के लिए ज्यादा कोशिशें करें। मुतासर अफराद में से 7 हलाक हो गए। 1,866 अफराद को शदीद या मोतदिल अलामात के साथ अस्पताल में दाखिल करवाया गया। 2,652 मुतासरीन की अलामात हल्की थी और उन्हें अस्पताल में दाखिल करने की जरूरत नहीं थी। मुतासर में से निस्फ से ज्यादा यानी 2,827 अफराद की उम्र 65 साल या उससे ज्यादा थी। 1,317 अफराद की उम्रें 18 से 64 साल थीं। 403 अफराद की उम्र 7 से 17 साल के दरमियान थी और 33 मुतासरीन 7 साल से कम उम्र के बच्चे थे। सबसे ज्यादा तादाद यानी 1,733 अफराद को रहायशी मकामात से, 944 को सड़कों से और 605 को स्टेडियम और पार्किंग लॉट जैसे आउटडोर इलाकों से अस्पताल मुंतकिल किया गया। जापान में तज्जिया कारों का कहना है कि लिथियम आयन बैटरियों पर मुश्तमिल आलात के ज्यादा गर्म हो जाने के सबब होने वाले हादसात में से निस्फ से ज्यादा चार्जिंग के दौरान पेश आए और ये कि गर्मियों में ऐसे वाकयात में इजाफा हो जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इवेल्युएशन या नाइटो ने पिछले 5 सालों में पोर्टेबल चार्जरों समेत इस तरह के आलात में आग लगने और धुएं के वाकयात का तज्जिया किया है। तज्जिये के मुताबिक 2025 में रिकॉर्ड 561 वाकयात रिपोर्ट हुए, जो 2024 के मुकाबले में 56 ज्यादा थे। 2025 तक के 5 सालों के दौरान कुल 2,140 हादसे रिपोर्ट हुए। तज्जियाकारों का कहना है कि उनमें से 1,237 या तकरीबन 57% वाकयात चार्जिंग के दौरान हुए। उनका यह भी कहना है कि 453 या तकरीबन 21% केसेस ऐसी मसनूआत के थे जिन्हें कंपनियों ने रिकॉल कर रखा था। बज़ाहर मौसम गर्मा में हादसात की तादाद में इजाफा हुआ, क्योंकि लिथियम आयन बैटरियां तपिश के मामले में हसास होती हैं। गाड़ियों में छोड़े जाने वाले पोर्टेबल चार्जर्स के कुछ वाकयात भी रिपोर्ट हुए। इदारे ने लोगों को हदायत की है कि वह चार्ज करते वक्त अपने आलात को नजरों के सामने रखें, उन्हें बराह रास्त सूरज की रोशनी में या गाड़ियों में ना छोड़ें और मसनूआत के रिकॉल की मालूमात चेक करें।
1: इसके साथ ही खबरें खत्म हुईं।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 15 जुलाई बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रीला जैन और वायला कवानो से सुने समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में पारगमन शुल्क लगाने की अपनी योजना रद्द कर दी है, हालांकि वे ईरान पर सैन्य दबाव बनाए हुए हैं। अमेरिकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि उसने ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों से आने जाने वाले जहाजों के खिलाफ फिर से नाकाबंदी शुरू कर दी है। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर यह घोषणा की। उसने बताया कि मंगलवार को पूर्वी समयानुसार 4:00 बजे नाकाबंदी फिर से शुरू हो गई। उसने यह भी बताया कि पश्चिम एशिया में नौसेना के 20 से अधिक जहाज और सैकड़ों विमान तैनात हैं। ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने हॉर्मुज के लिए 20% पारगमन शुल्क लगाने की अपनी योजना रद्द कर दी है। उन्होंने वॉशिंगटन में पत्रकारों को बताया कि क्षेत्र के नेताओं ने इसके बदले अमेरिका में निवेश करने की पेशकश की है। इससे पहले ट्रंप ने सुझाव दिया था कि सुरक्षित आवागमन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह शुल्क आवश्यक है। हालांकि अमरीकी मीडिया केंद्रों ने कहा कि इस योजना का उनके सहयोगी देशों और उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों ने कड़ा विरोध किया है। सेंटकॉम ने कहा कि सेना ने मंगलवार को ताजा हमले किए। ये लगातार 4th दिन है जब अमरीकी सेना ने हमले किए हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने मंगलवार को बताया कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कुवैत और बहरीन में अमरीकी वायु सैनिक अड्डों पर हमला किया है। यूक्रेन में आम नागरिकों के हताहत होने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार निगरानी संस्था ने बताया कि अकेले जून महीने में कम से कम 2,283 नागरिक मारे गए या घायल हुए, जो अप्रैल 2022 के बाद से एक महीने में हताहतों की सबसे अधिक संख्या है। यूक्रेन स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निगरानी मिशन ने मंगलवार को ये आंकड़े जारी किए। मिशन के अनुसार पिछले महीने कम से कम 293 नागरिक मारे गए और 1,990 घायल हुए। मिशन ने कहा कि हताहत नागरिकों की बढ़ती संख्या के साथ ये आंकड़े चिंताजनक रूप से बढ़ते तनाव को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में रूस द्वारा शक्तिशाली हथियारों का बढ़ता उपयोग इस वृद्धि का मुख्य कारण है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर रूस पर ताजा हमले की घोषणा की। उन्होंने लिखा कि यूक्रेनी सेना ने मध्यवर्ती रूस में स्थित बाशकोरतोस्तान और देश के दक्षिणी भाग में स्थित क्रास्नोदार क्षेत्र में तेल रिफाइनरियों पर हमला किया है। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि उनके देश की सेनाओं ने काला सागर के किनारे स्थित ग्लेंजिक शहर में रूसी गुप्त बेड़े से संबंधित एक गश्ती जहाज और एक टैंकर पर हमला किया। उन्होंने आगे कहा कि इस युद्ध को समाप्त करना ही होगा। राष्ट्रपति ने रूस पर दबाव बनाने और उससे बातचीत में शामिल होने की आवश्यकता पर जोर दिया।

0: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जापान के साथ सहयोग मजबूत करने के लिए टोक्यो में एक कार्यालय खोला है। इस नए कार्यालय का उद्देश्य विकासशील देशों में स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था सुदृढ़ करना है। टोक्यो में मंगलवार को उद्घाटन समारोह में WHO और जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों सहित कई लोग उपस्थित रहे। एक वीडियो संबोधन में WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रियासिस ने कहा, निम्न व मध्यम आय वाले कई देशों को अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए वित्त पोषण में कमी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने जोर दिया कि कार्यालय का उद्घाटन एक प्रयास है ताकि सहायता पर निर्भरता से हटकर स्वास्थ्य संप्रभुता की ओर बढ़ा जा सके। जापान के स्वास्थ्य मंत्री उएनो केनिचिरो ने कहा कि अधिक लचीली स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए देशों को अपना अनुभव और ज्ञान

0: साझा करना चाहिए। उएनो ने उम्मीद जताई कि नया कार्यालय जापान और WHO के बीच संपर्क के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में मजबूती से स्थापित हो जाएगा। उन्होंने संकेत दिया कि जापान अन्य देशों में स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थाओं के निर्माण में भूमिका निभाना चाहता है। टोक्यो कार्यालय का कहना है कि वो विकासशील देशों के साथ अपनी विशेषज्ञता और जानकारी साझा करना चाहता है तथा जापान के साथ समन्वय बढ़ाने के प्रयासों के तहत स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ प्रशिक्षण सत्र और बैठकें आयोजित करना चाहता है। जापान की अग्नि एवं आपदा प्रबंधन एजेंसी का कहना है कि 6 से 12 जुलाई के बीच तापघात के कारण 4,580 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जो पिछले सप्ताह की तुलना में 3 गुना से अधिक है। एजेंसी ने इस वृद्धि का कारण कई क्षेत्रों में बारिश का मौसम समाप्त होने के बाद लगातार कई दिनों तक उच्च तापमान बने रहना बताया है। एजेंसी लोगों से तापघात बचाव उपाय तेज करने का आग्रह कर रही है। तापघात का शिकार लोगों में से 7 की मौत हो गई, 1,866 लोगों को गंभीर या कुछ कम लक्षणों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया और 2,652 लोगों में हल्के लक्षण देखे गए, जिनके लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं थी। प्रभावित लोगों में से आधे से ज्यादा यानी 2,827 लोग 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के थे, 1,317 लोग 18 से 64 वर्ष के थे, 403 लोग 7 से 17 वर्ष की आयु के बीच थे और 7 वर्ष से कम आयु के 33 बच्चे थे। जापान के विश्लेषकों का कहना है कि लिथियम आयन बैटरी से जुड़ी आधी से अधिक दुर्घटनाएं चार्जिंग के दौरान हुई जब उपकरण बहुत अधिक गर्म हो गए। उनका कहना है कि गर्मियों में ऐसे मामलों में वृद्धि होने की आशंका है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इवैल्यूएशन नाइट ने पिछले 5 वर्षों में पोर्टेबल चार्जर सहित ऐसे उपकरणों से जुड़ी आग और धुएं की घटनाओं का विश्लेषण किया। उसके अनुसार 2025 में रिकॉर्ड 561 मामले सामने आए, जो 2024 की तुलना में 56 अधिक है। 2025 तक 5 वर्षों में कुल 2,140 दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। विश्लेषकों का कहना है कि इनमें से 1,237 यानी लगभग 57% दुर्घटनाएं चार्जिंग के दौरान हुई। उनका ये भी कहना है कि 453 यानी लगभग 21% मामले रिकॉल उत्पादों से संबंधित थे। गर्मी के मौसम में दुर्घटनाओं की संख्या में शायद वृद्धि देखी गई, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी ताप के प्रति संवेदनशील होती है। इनमें कारों में छोड़े गए पोर्टेबल चार्जर के मामले भी शामिल थे। नाइट लोगों से अपील कर रहा है कि चार्जिंग के दौरान उपकरणों को अपनी नजर के सामने रखें, उन्हें सीधी धूप या कारों में न छोड़ें और रिकॉल संबंधी जानकारी के बारे में जागरूक रहें।
1: इसी के साथ NHK World जापान की हिंदी सेवा से यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 20वें पाठ में व्यंजन या पेय पदार्थ में कोई चीज न डालने का अनुरोध करना सीखेंगे।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ होक्काइदो आई है। दोनों सापोरो शहर में एक मछली बाजार के पास ताजा समुद्री खाद्यों का आनंद लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में आई हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 20वें पाठ की बातचीत।
2: ओसुसुमे वा नान देसु का?
3: कोनो स्पेशल काइसेन डो गा ओसुसुमे दा यो। इकुरा तो उनी गा ताप्पुरी हाइत्तेरु यो।
2: जा सोरे कुदासाई। वातासी मो वासाबी वा इरेनाई दे कुदासाई।
3: वासाबी नुकी ने। सोचिरा वा?
2: वातासी वा वासाबी ओ ताकुसान इरेते कुदासाई।
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले मिया ने रसोइये से कहा,
2: ओसुसुमे वा नान देसु का?
1: आपका सुझाव क्या है?
0: रसोइये ने मेन्यू की तरफ इशारा करते हुए कहा,
3: कोनो स्पेशल काइसेन डो गा ओसुसुमे दा यो।
0: ये खास चावल और मछलियों वाला कटोरा बढ़िया है।
3: इकुरा तो उनी गा ताप्पुरी हाइत्तेरु यो।
0: इसमें ढेर सारे इकुरा और उनी है।
1: तब मिया ने कहा,
2: जा सोरे कुदासाई।
1: तो फिर वही लूंगी।
0: उसे देखकर ताम ने भी वही व्यंजन मंगवाया।
2: वातासिमो?
1: मैं भी।
2: वासाबी वा इरेनाई दे कुदासाई।
1: वासाबी मत डालिएगा।
0: फिर रसोइये ने पुष्टि की,
3: वासाबी नुकी ने?
0: वासाबी के बिना ना।
1: उसके बाद उसने मिया से पूछा,
3: सोचिरा वा?
0: और आप?
1: तो मिया ने जवाब दिया,
2: वातासी वा वासाबी ओ ताकुसान इरेते कुदासाई।
1: मेरे वाले में ढेर सारी वासाबी डालिएगा।
0: इस बातचीत में काइसेंदोन और वासाबी का जिक्र है। काइसेंदोन का मतलब है चावल और मछलियों वाला कटोरा, और वासाबी एक पौधे की जड़ है। ये पिसी हुई सरसों जैसी झारदार होती है और कच्ची मछली के साथ खाने में अच्छी लगती है।
1: वासाबी की झार जीभ पर ही नहीं नाक में भी महसूस होती है। मिया ने बहुत सारी वासाबी डलवाई है। लगता है उसे उसकी झार बहुत पसंद है।
0: आज का मुख्य वाक्य है
2: वासाबी वा इरेनाई दे कुदासाई,
0: यानी वासाबी मत डालिएगा। ये वाक्य याद करके आप व्यंजन या पेय पदार्थ में कोई चीज न डालने का अनुरोध कर सकेंगे।
1: इस वाक्य में
4: वासाबी
1: का मतलब है पिसी हुई वासाबी, और
4: इरेनाई दे कुदासाई
1: का मतलब है मत डालिएगा।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि व्यंजन या पेय पदार्थ में कुछ न डालने का अनुरोध करते समय क्रिया के नाई रूप का उपयोग करते हैं और उसके बाद लगाते हैं
4: देकुदासाई।
1: क्रिया के नाई रूप में अंत में नाई लगता है। ये क्रिया का नकारात्मक रूप है। वाक्य में
4: इरेनाई
1: क्रिया
4: इरेरु
1: यानी डालना का नाई रूप है।
0: उसके बाद लगाया है
4: देकुदासाई,
0: तो बन गया
4: इरेनाई दे कुदासाई।
0: जो चीज आपको नहीं चाहिए उसके नाम के बाद कारक वा लगाते हैं।
1: क्रिया के नाई रूप के बाद
4: दे कुदासाई
1: जोड़कर आप कुछ न करने का अनुरोध कर सकते हैं।
0: तो अब ये वाक्य बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
4: इरेनाई दे कुदासाई, वासाबी वा इरेनाई दे कुदासाई।
1: अब एक कैफे में चल रही छोटी सी बातचीत सुनते हैं। इसमें ग्राहक पेय पदार्थ में कोई चीज न डालने का अनुरोध कर रहा है।
5: ओरेंज जूस 1つ। 氷は入れないでください。
6: かしこまりました。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले आदमी ने कहा,
5: ओरेंज जूस 1つ。 氷は入れないでください。
0: एक संतरे का रस, बर्फ मत डालिएगा।
4: ऑरेंज जूस
1: है संतरे का रस।
4: हितोत्स
1: का अर्थ है एक, और
4: कोरी
1: का मतलब है बर्फ। उस आदमी को संतरे के रस में बर्फ नहीं चाहिए, इसलिए उसने कहा
4: कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई।
0: जवाब में महिला ने कहा
6: काशिकोमारीमास्ता।
1: जी,
0: ये अच्छा या समझ गई कहने का औपचारिक तरीका है।
1: तो अब सुनिए और दोहराइए
4: कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई। कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई।
0: अब आप भी वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि आप दुकानदार से कहना चाहते हैं कि आपकी सलाद में ड्रेसिंग ना डाले। ड्रेसिंग को जापानी भाषा में कहते हैं
4: ड्रेसिंग, ड्रेसिंग।
0: इस वाक्य में क्रिया डालना का जापानी शब्द होगा
4: काकेरु,
0: और उसका नाई रूप है
4: काकेनाई, काकेनाई।
0: तो कोशिश कीजिए।
6: ドレッシングはかけないでください。ドレッシングはかけないでください。
1: अब मान लीजिए कि आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं और दुकानदार से कहना चाहते हैं कि उसमें मिर्च न डाले। मिर्च को जापानी भाषा में कहते हैं
4: तोगाराशी, तोगाराशी।
1: उसका नाई रूप है
4: स्कावानाई, स्कावानाई।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
3: तोगाराशी वा स्कावानाई दे कुदासाई। तोगाराशी वा स्कावानाई दे कुदासाई।
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो मिया की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
2: おすすめは何ですか？
1: इसमें
4: おすすめ
1: का मतलब है सुझाव। तो
4: おすすめは何ですか
1: का मतलब है आपका क्या सुझाव है। इसके जवाब में रसोईया आपको बताएगा कि रेस्तरां का सबसे लोकप्रिय व्यंजन कौन सा है या उसके अनुसार सबसे स्वादिष्ट व्यंजन कौन सा है।
0: तो अब उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए।
4: おすすめは何ですか？
1: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
6: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: अब बारी है अंश काइटो के साथ खाना पीना की। आज हम बता रहे हैं होक्काइडो के प्रसिद्ध समुद्री खाद्य पदार्थों के बारे में।
1: होक्काइडो जापान सागर, ओहोत्स्क सागर और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। इस वजह से वहां का मत्स्य उद्योग बहुत समृद्ध है।
0: वहाँ केकड़ा, समुद्र फेनी, सामन, इकुरा यानी सामन के अंडे और अन्य बहुत सारे समुद्री खाद्य खूब मिलते हैं।
1: दुनिया भर में फैले खाने पीने के शौकीन लोग होक्काइडो के समुद्री खाद्यों का स्वाद पहचानते हैं। खास तौर पर यहाँ की सीपों का बड़ी संख्या में निर्यात होता है।
0: होक्काइडो के बंदरगाहों के पास बहुत सारे रेस्तरां हैं, जहाँ कच्चे केकड़े या झींगा मछली के स्थानीय व्यंजनों का आनंद लिया जा सकता है। ताज़ा समुद्र फेनी और समुद्री साही भी बहुत स्वादिष्ट होती हैं।
1: अगर आप होक्काइडो घूमने जाएं, तो मौसमी समुद्री खाद्य का भी भरपूर लुत्फ जरूर उठाइएगा। दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम और मिया होक्काइडो में घूमेंगी। तब तक के लिए
1: सायोनारा।

0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें। आलमी इदारा सेहत WHO ने जापान के साथ अपने ताउन को गहरा करने के लिए टोक्यो में एक दफ्तर कायम किया है। इस नए दफ्तर का मकसद तरक्की पजीर ममालिक में सेहत की देखभाल के निजामों को मजबूत बनाना है। मंगल को टोक्यो में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। WHO और जापान की वजारत सेहत के सीनियर हुकाम ने दीगर अफराद के हमरा इस तकरीब में शिरकत की। एक वीडियो खिताब में WHO के डायरेक्टर जनरल टेडरोस एडहानोम गेब्रियासिस ने कहा, कम और दरमियानी आमदनी वाले बहुत से ममालिक को अपने सेहत निजामों के लिए गैर मुस्तहकम फाइनेंसिंग का सामना रहता है। उन्होंने जोर दिया कि टोक्यो दफ्तर का इफ्तिताह इमदाद पर इन्हिसार के बजाय सेहत के मैदान में खुद मुख्तारी की जानिब मुंतकली की कोशिशों का मजहर है। जापानी वजीर सेहत ओइनो केन इचिरो ने कहा, ममालिक के लिए जरूरी है कि वह सेहत के ज्यादा मुस्तहकम निजाम की तामीर के लिए अपने तजर्बे और इल्म का इश्तराक करें। ओइनो ने कहा, उन्हें उम्मीद है कि नया दफ्तर जापान और WHO के दरमियान राब्ते के मरकज के तौर पर मजबूती से कदम जमा लेगा। उन्होंने इंदिया दिया कि जापान दीगर ममालिक में सेहत देखभाल के निजामों की तामीर में किरदार अदा करना चाहता है। टोक्यो दफ्तर का कहना है कि वह तरक्की पजीर ममालिक के साथ अपनी मालूमात और इल्म महारत का इश्तराक और जापान के साथ हम आहंगी को गहरा करने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर सेहत के हुक्काम के साथ तरबियती नशिस्तें और इजलास मुनाकिद करना चाहता है। जापान की फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी का कहना है कि 6 से 12 जुलाई के दरमियान 4,580 अफराद को हीट स्ट्रोक यानी लू लगने के सबब अस्पताल ले जाया गया। यह तादाद गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत 3 गुना ज्यादा है। एजेंसी ने कई रोज से दिन के वक्त दर्जा हरारत ज्यादा रहने को मुतासरीन की तादाद में इजाफे की वजह करार दिया है, क्योंकि बहुत से इलाकों में बरसात का मौसम खत्म हो गया है। एजेंसी लोगों से अपील कर रही है कि वह हीट स्ट्रोक के खिलाफ इकदाम के लिए ज्यादा कोशिशें करें। मुतासर अफराद में से 7 हलाक हो गए। 1,866 अफराद को शदीद या मोतदिल अलामात के साथ अस्पताल में दाखिल करवाया गया। 2,652 मुतासरीन की अलामात हल्की थी और उन्हें अस्पताल में दाखिल करने की जरूरत नहीं थी। मुतासर में से निसफ से ज्यादा यानी 2,827 अफराद की उम्र 65 साल या उससे ज्यादा थी। 1,317 अफराद की उम्रें 18 से 64 साल थीं। 403 अफराद की उम्र 7 से 17 साल के दरमियान थी और 33 मुतासरीन 7 साल से कम उम्र के बच्चे थे। सबसे ज्यादा तादाद यानी 1,733 अफराद को रहायशी मकामात से, 944 को सड़कों से और 605 को स्टेडियम और पार्किंग लॉट जैसे आउटडोर इलाकों से अस्पताल मुंतकिल किया गया। जापान में तज्जिया कारों का कहना है कि लिथियम आयन बैटरियों पर मुश्तमिल आलात के ज्यादा गर्म हो जाने के सबब होने वाले हादसात में से निस्फ से ज्यादा चार्जिंग के दौरान पेश आए और ये कि गर्मियों में ऐसे वाकयात में इजाफा हो जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इवेल्युएशन या नाइटो ने पिछले 5 सालों में पोर्टेबल चार्जरों समेत इस तरह के आलात में आग लगने और धुएं के वाकयात का तज्जिया किया है। तज्जिये के मुताबिक 2025 में रिकॉर्ड 561 वाकयात रिपोर्ट हुए, जो 2024 के मुकाबले में 56 ज्यादा थे। 2025 तक के 5 सालों के दौरान कुल 2,140 हादसे रिपोर्ट हुए। तज्जियाकारों का कहना है कि उनमें से 1,237 या तकरीबन 57% वाकयात चार्जिंग के दौरान हुए। उनका यह भी कहना है कि 453 या तकरीबन 21% केसेस ऐसी मसनूआत के थे जिन्हें कंपनियों ने रिकॉल कर रखा था। बज़ाहर मौसम गर्मा में हादसात की तादाद में इजाफा हुआ, क्योंकि लिथियम आयन बैटरियां तपिश के मामले में हसास होती हैं। गाड़ियों में छोड़े जाने वाले पोर्टेबल चार्जर्स के कुछ वाकयात भी रिपोर्ट हुए। इदारे ने लोगों को हदायत की है कि वह चार्ज करते वक्त अपने आलात को नजरों के सामने रखें, उन्हें बराह रास्त सूरज की रोशनी में या गाड़ियों में ना छोड़ें और मसनूआत के रिकॉल की मालूमात चेक करें।
1: इसके साथ ही खबरें खत्म हुई।

0: पसंद करती है।
1: वतशिमो।
2: मुझे भी।
1: आ, वसाबी वा इरेनाई दे कुदासाई।
2: और हाँ, वसाबी मत डालिए।
0: बावर्ची दोहरा कर तस्दीक करता है।
3: वसाबी नुकी ने।
2: वसाबी के बगैर, ठीक है ना?
0: फिर वो मियाँ से मुखातिब होता है।
3: सोचिरा वा?
2: और आपके लिए?
0: मियाँ जवाब देती है।
1: वतशि वा वसाबी वो तकसान इरेते कुदासाई।
2: मेरे प्याले में बहुत सी वसाबी डालिए।
0: खाइसेन दोंग के प्याले में चावलों के ऊपर मुख्तलिफ अकसाम की समुद्री खुराक होती है।
2: और वसाबी एक जापानी चटनी है जो न सिर्फ जबान को तेज लगती है बल्कि नाक में भी चुभती है। ये कच्ची मछली के साथ अक्सर खाई जाती है। ताम के बरखिलाफ मियाँ को शायद वसाबी बहुत पसंद है।
0: तो आइए आज का मुकालमा एक बार फिर सुनते हैं।
1: ओसुसुमे वा नान देसु का?
3: कोनो स्पेशल खाइसेन दोंग गा ओसुसुमे दा यो। इकुरा तो उनी गा तप्पुरी हाइत्तेरु यो।
1: जा सोरे कुदासाई। वतशि मो। आ, वसाबी वा इरेनाई दे कुदासाई।
3: वसाबी नुकी ने। सोचिरा वा?
1: वतशि वा वसाबी वो तकसान इरेते कुदासाई।
0: आज के सबक का कलीदी जुमला है, वसाबी मत डालिए।
1: वसाबी वा इरेनाई दे कुदासाई।
0: अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए अपने खाने या पीने की चीज में कोई चीज ना डालने की दरख्वास्त कर सकते हैं।
2: वसाबी यानी तेज जापानी चटनी और इरेनाई दे कुदासाई का मतलब है मत डालिए। आज का नुक्ता, किसी को अपने खाने या पीने में कोई चीज ना डालने की दरख्वास्त करने के लिए फेल की नाई शक्ल के बाद दे कुदासाई लगाएंगे।
0: अनवर साहब, नाई शक्ल की कुछ वजाहत करें।
2: नाई शक्ल फेल की मुख्तलिफ शक्लों में से एक है जिसका अख्ताम नाई पर होता है। ये नफी का सीगा है। अगर आप खाने पीने की किसी चीज़ का ऑर्डर करते वक्त उसमें कोई चीज़ ना डलवाना चाहें तो फेल इरेरू यानी डालना की नाई शक्ल इरेनाई इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ दे कुदासाई लगाने से ये बनेगा इरेनाई दे कुदासाई। किसी भी नापसंदीदा चीज़ के बारे में मना करने के लिए उस चीज़ के नाम के बाद वा, फिर फेल की नाई शक्ल और उसके बाद दे कुदासाई लगाया जाएगा। ये किसी काम से रोकने की दरख्वास्त है।
0: तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
4: इरेनाई दे कुदासाई। वासाबी वा इरेनाई दे कुदासाई। वासाबी वा इरेनाई दे कुदासाई।
0: जी सामीन, यकीनन आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
2: और अब एक कैफे या रेस्तरां में होने वाला मकालमा सुनिए। ग्राहक वेट्रेस से अपने मशरूब में कोई चीज न डालने का कहता है।
5: ओरेंज जूस 1つ कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई।
1: काशिकोमारिमाशिता।
2: अब इस मकालमे की तशरीह।
5: ओरेंज जूस 1つ कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई।
0: एक ऑरेंज जूस, बर्फ मत डालिए।
2: ऑरेंज जूस यानी ऑरेंज जूस, हितोत्सु यानी एक, कोरी का मतलब है बर्फ। चूंकि ग्राहक बर्फ नहीं डलवाना चाहता इसलिए उसने कहा कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई यानी बर्फ मत डालें।
1: काशिकोमारिमाशिता।
0: जी समझ गई।
2: ये समझ गया या समझ गई कहने का बहुत ज्यादा शाइस्ता अंदाज है।
0: तो अब सुनिए और दोहराइए।
4: कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई। कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई।
2: अब कैफे या रेस्तरां के अमले को अपने ऑर्डर किए हुए खाने पीने में कोई और चीज़ डालने से मना करने की मशक करते हैं। फ़र्ज़ करें आप सलाद पर ड्रेसिंग नहीं डलवाना चाहते तो अमले से क्या कहेंगे? ड्रेसिंग की जापानी है
4: ड्रेसिंग, ड्रेसिंग।
2: और कोई चीज़ ऊपर से छिड़क कर डालने को कहते हैं काकेरू। इसकी नाई शक्ल होगी
4: काकेनाई, काकेनाई।
2: तो सामीन कोशिश करें।
1: ドレッシングはかけないでください。ドレッシングはかけないでください。
2: और अमले से ये किस तरह कहेंगे कि आपके लिए खाना बनाने में मिर्च ना इस्तेमाल करें? मिर्च को कहते हैं
4: तोगराशी, तोगराशी।
2: इस्तेमाल करना ये है स्काऊ और इसकी नाई शक्ल है
4: स्कावानाई, स्कावानाई।
2: तो जुमला बनाकर देखें।
6: तोगराशी वा त्सकावानाई दे कुदासाई।
0: तोगराशी वा त्सकावानाई दे कुदासाई। پروگرام کی ویب سائٹ پر کئی فعل اور ان کی نائی شکل کی مثالیں موجود ہیں۔
2: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا جملہ مکالمے سے میاں کا جملہ ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیں۔
7: اوسسمے وا نان دیسکا؟
2: اوسسمے کے معنی ہے سفارش۔ اگر آپ کسی ریستوران کے عملے سے پوچھیں گے کہ اوسسمے وا نان دیسکا، تو عملہ ممکنہ طور پر سب سے زیادہ پسند کی جانے والی ڈش یا پھر اپنے ریستوران کی خاص فخریہ ڈش کی سفارش کرے گا۔
0: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
8: اوسسمے وا نان دیسکا؟
9: اوسسمے وا نان دیسکا؟
10: اوسسمے وا نان دیسکا؟
0: جی سامعین، اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔
4: اوسسمے وا نان دیسکا؟
2: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
7: اوسسمے وا نان دیسکا؟
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
7: じゃあそれください。
11: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
7: 私はわさびをたくさん入れてください。
12: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: アラブカノケショキンカイトケマシプロンカカーナル。آج کا موضوع ہوکائیدو کی سمندری خوراک ہے۔
2: ہوکائیدو تین سمندروں، بحیرہ جاپان، بحیرہ اوخوتسک اور بحر الکاہل میں گھرا ہوا ہے، چنانچہ یہاں ماہی گیری بہت عام ہے۔
0: کیکڑے، سکویڈ، سالمن اور سالمن کینڈے یہاں وافر مقدار میں پائے جانے والی سمندری خوراک کی کچھ مثالیں ہیں۔
2: ہوکائیدو کی سمندری خوراک جاپان بھر میں مشہور ہے اور ڈپارٹمنٹ اسٹورز میں اکثر ہوکائیدو بازار لگائے جاتے ہیں۔ ہوکائیدو کی سمندری خوراک کا ذائقہ بیرون ملک بھی مشہور ہے، خصوصاً صدفی مچھلی اپنی بلند مقبولیت کے باعث بڑی مقدار میں برآمد کی جاتی ہے۔
0: یہ کچی بھی کھائی جاتی ہے اور خول کے ساتھ آگ پر بھون کر بھی۔
2: ہوکائیدو کی بندرگاہوں کے قریبی علاقوں میں کچے کیکڑے اور جھینگے جیسی تازہ مقامی سمندری خوراک سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ تازہ شکار کیے گئے اسکوئڈ اور سمندری خارپشت بھی لذیذ ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہوکائیدو کا سفر کریں تو موسم کی سمندری خوراک سے ضرور لطف اندوز ہوں۔